0: एक अखर हर मन बसत नानक होत निहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।
1: राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

मस्तक रख्या पार ब्रह्मं, हस्तकाया रख्या परमेश्वर है, आत्म रख्या गोपाल स्वामी, तन चरण रख्या जगदीश्वर है, सर्व रख्या गुरुदयाल है, पह दुख विनाशन है, भगत वचल अनाथ नाथे शरण, नानक पुरखाच्युत है, कोर दोख्यं अनक हत्यं, जन्म दारिद्रं महाभिख्यादन, मिटंत सगल समरंत हर नाम नानक, जैसे पावक काष्ठ पस्म क्रोध, सोरठ महला पंजवा, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौह गिरदा हमारे, राम नाम मन लागा, जम लजाए कर पागा, प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूरन पुरख विधाता रहाओ, नानक प्रभ बिनासी, ताकि सेव न बिरथी जासी, अनद करे तेरे दासा, जप पूरन होई आसा, बिलावल महला पंजवा, ताती वाऊ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई, चौ गिरद हमारे रामकार, दुख लगे न पाई, सदगुर पूरा पेटिया, जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया, एकाल विनाई रहाओ, राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याध मिटाई, कहु नानक कृपा पही, प्रभु पहे सहाई, सलोक जय साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू न छुटे, निकट न जाइय हो दूत, सलोक महला पंजवा, मन मह चितवो चितवरी, उदम करोठ नीत, हर कीर्तन का आहरो, हर देहो नानक के मीत, सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, इक ओवंकार सदगुर प्रसाद, जय कर कीरत आख्य, करते का होई बीचारो, तितकर गावहो सोहिला, सिमरहु सृजनहारो, तुम गावहो मेरे निरपो का सोहिला, हो वारी जित सोहिला, सदा सुख होए रहाओ, नित नित जियड़े समालियन, देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कमन सुमार, संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देहो सजन असी सड़िया, ज्यो होवै साहिब स्यो मेल, कर कर एहो पहुंचा, सदड़े नित पवन, सदन हारा समरिय, नानक से देहे आवन, राग आसा महला पहला, छे कर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वटाई तोय रहाओ, विश्वे तस्या कन्या पहरा, थित्ती वारी माहो हुआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस, राग तनाश्री महला पहला, गगन मैथाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आनलो पवन चमरो करे, सगल बन राय फूल अंत ज्योति, कैसी आरती होए पव खंडना तिरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ, सहस्तम नयन नन नयन है तुहे को, सहस मूरत नन एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिन सहस्तम गंध इव चलत मोही, सब मह ज्योत ज्योत है सोए, तिस दय चानन सब मह चानन होए, गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योतस पावे सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लो बितमनो, अनंतनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देहे नानक सारंग को, होए जाते तेरा नायवासा, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु पर्या, मिल साधु खंडल खंडा हे, पूरब लिखत लिखे गुरु पाया, मन हरलिव मंडल मंडा हे, कर साधु अंजुली पुनवडा हे, कर दंडोत पुनवडा हे रहाओ, साकत हर रस साध न जान्या, तिन अंतर हो मैं खंडा हे, ज्यो ज्यो चलह चुभ दुख पावह, जमकाल सह हे सिर डंडा हे, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पम खंडा हे, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे, हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राखु राख वडवडा हे, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा हे, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, ओद कटे दिन से रहना रे मन, गुरमिल काज सवारे रहाओ, एहो संसार बिकार संसेम है, तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिसहे जगाए पी आवे, एहो रस अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सुई बिहा जहो, हर गुरते मन है बसेरा, निज कर महल पावो।

पात नरिंद केतिया सुरते सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तथा नाद विनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तथा घाड़त घड़िया बहुत अनूप ता किया गला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछुताए तथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तथा घड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मह राम रहिया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरह ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसह के लो करह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर विखै नदर निहाल तथा खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तथा लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार विखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाहारा धीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खला अगन ताप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिन काओ नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खिलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हादूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतह जाप श्री मुख वाक पात साही दसवी छपै छंद त्वै प्रसाद चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख कोऊ कह ना सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जै कोट इंदर इंदरान साहे साहान गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रिन कहत त्वै सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग पर्यात छंद नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सो एकाय नमस्तं अनेकाय नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निरकर्मे नमस्तं निरपरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अपूते
नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं परपोगे नमस्तं सोजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निरतामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवाय नमस्तं अपेवाय नमस्तं अजन्मे नमस्तं सोबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो सर्वकाल नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अबरणे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारंग नमस्तं कृतारंग नमो सर्वतंदे नमोस्त अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वय प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंध हैं अबंध हैं निर्बूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजाह हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं निरसरीक हैं निरलंब हैं असंभ हैं अगम हैं अजम हैं अभूत हैं अछूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अबाह हैं अगाह हैं अमान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक हैं पुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ते स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ते बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वरं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरं परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी
सदा सिद्ध दा बुद्ध दा ब्रिद करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हरता परम परम परमेश्वरं पुरोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अचेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज

बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे को कर्मं परनासी सदा सर्वदा रिद सिद्धं निवासी चरपट छांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर तत्र विराज ही अवधूत रूप रे साल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नारेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेस जाकर रूप रेख ना राग जतर तत्र दिशा विसा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हूं नह जाहे सर्वमान सर्वतर मान सदैव मान तताहि एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव ना जान ही जह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई कह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जह जाप आद देव अनाद मूरत थापेओ सबै जह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गढ़न भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग न रंग जाकह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जान ही जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नित पाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आव ही बहु चित मद भार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंदर बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अब अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण परनाम निरपह निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा भार नाडै अन डंड बाडै चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पूजंग प्रयात छंद चतर चक्कर करता चतर चक्कर हरता चतर चक्कर दाने चतर चक्कर जाने चतर चक्कर वर्ती चतर चक्कर भरती चतर चक्कर पाले चतर चक्कर काले चतर चक्कर पासे चतर चक्कर वासे चतर चक्कर मानिया चतर चक्कर दानिया चाचरी छंद ना सत्तर ना मित्र ना परमंग ना पितर ना

अजन्मं अजाय न चित्तरै न मित्तरै परे है पवित्रै पृथिसै अदिसै अदृश्यै अकृश्यै भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के बिभूत करनै के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आ शोक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्तरंग बेहीनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफवल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वतर मान्या के सर्वतर दान्या के सर्वतर गौना के सर्वतर भावना के सर्वतर देसा के सर्वतर भेसा के सर्वतर राजा के सर्वतर साजा के सर्वतर दीना के सर्वतर लीना के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देसा के सर्वतर भेसा के सर्वतर काला के सर्वतर पाला के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजा के सर्वतर राजा के सर्वतर सोखा के सर्वतर पोखा के सर्वतर तराना के सर्वतर प्राण के सर्वतर देसा के सर्वतर भेसा के सर्वतर मान्या सदैवं प्रधान्या के सर्वतर जापया के सर्वतर थापया के सर्वतर भाना के सर्वतर माना के सर्वतर इंद्रा के सर्वतर चंद्रा के सर्वं कलीमा के परमं फहीमा के आकल अलामा के साहिब कलामा के हुसनुल वजू है तमामुल रजू है हमेशुल सलामा सलीखत मुदामै गनीमुल सिकस्तै गरीबुल परस्तै बिलंदुल मकानै जमीनुल जमानै तमीजुल तमामै रजूअल निदानै हरीफुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअंग आद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सो सर्वा अनुरागै त्रिभुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं किनरकं परनास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुगत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अदूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अभगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगंभ है
अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, आजाद है, चरपट छंद त्वय प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, रसावल छंद त्वय प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं, प्रकाशे अनंगं, स्वरूपे अपंगं, विभूते परमाथं परमाथे, सदा सर्व साथे अगाद, स्वरूपे निर्बाध, विभूते अनंगी, अनामे, त्रिभंगी, त्रिकामे, निरपंगी, स्वरूपे सर्वंगी, अनूपे, न पोतराय, न पुत्राय, न सत्राय, न मित्राय, न ताताय, न माताय, न जाताय, न पाताय, निरसाकं, सरीक है, अमितो, अमीक है, सदैवं, प्रभा है, अजय है, अजा है, भगवती छंद त्वय प्रसाद, के जाहर जहूर है, के हाजर हजूर है, हमेशुल सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के हुसनल चराग है, के कामल करीम है, के राज कर हीम है, के रोजी देहांद है, के राज कर हिंद है, करीमुल कमाल है, के हुसनुल जमाल है, गनीमुल खिराज है, गरीबुल निवाज है, हरी फुल से कान है, हिरासुल फेकान है, कलंकं परनास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब किरा है, के नरकं परनास है, बेहेस्तुल निवास है, के सर्बुल गवान है, हमेशुल रवान है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परं परम ईस है, समस्तुल अदीस है, अदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, के जुरत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के अमितो सुबास है, के अजब स्वरूप है, के अमितो बेपूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, के अमितो अपंग है, मद पार छंद त्वय प्रसाद, मुन मन प्रणाम, गुण गण मुदाम, अर बर अगंज, हर नर प्रपंज, अन गण प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, अनुभव अनास, मुन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम, जल थल मुदाम, अनछिज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गत मित उदार, जल थल अमंड, दिस विस अपंड, जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अनुभव अनास, त्रित धर तुरास, आ जान बाहु, एकै सदाहु, ओंकार आदि कथनी अनाद, खल खंड ख्याल, गुरबर अकाल, घर घर प्रणाम, चित चरण नाम, अन छिज गात, आजिज ना बात, अन झंझ गात, अन रंज बात, अन तुट भंडार, अन थट अपार, आडीठ धर्म, अत ठीठ कर्म, अन ब्रन अनंत, दाता महंत, हर बोल मना छंद, त्वय प्रसाद, करुणालय है, अरकालय है, खाल खंडन है, मह मंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, काल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास्या है, सर्व नास्या है, करुणाकर है, विश्वंग पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खल खंडस है, पर ते पर है, करुणाकर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है,
अकृता कृत है, धरणी धृत है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अजबा कृत है, अमृता मृत है, नर नायक है, खल कायक है, विश्वंग पर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्व पायक है, भव भंजन है, अरगंजन है, रिप तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुजंग पर्यात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग बेपूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद, अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश, अगंज अपंज, अलख अपख, अकाल दयाल, अलेख अपेख, अनाम अकाम, अगाह अटाह, अनाथे परमाथे, अजोनी अमोनी, नारागे नारंगे, नारूपे नारेखे, अकर्मंग अपर्मंग, अगंजे अलेखे, पुजंग पर्यात छंद, नमस्तुल परनामे, समस्तुल परनासे, अगंजुल अनामे, समस्तुल निवासे, निरकामं बेपूते, समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं परनासे, सुतर्मं बेपूते, सदा सचदानंद, सतरंग परनासी, क्रीमुल कुनिंदा, समस्तुल निवासी, अजायब बेपूते, गजायब गनीमे, हरियं करियं, क्रीमुल रहीमे, चत्तर चक्रवर्ती, चत्तर चक्र भुगते, स्वयं भव सुभं, सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं परनासी, दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे, अपंगं बेपूते, दुकालं परनासी, दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे, अपंगं बेपूते, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पात साहि दसवी त्वय प्रसाद, सुवैये सरावग सुध समूह सिधान के, देख फिरयो घर जोग जति के, सूर सुरार्दन सुध सुधादिक, संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो, मत को ना देखियत प्राण पति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते, एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन कौ जात निवारे, भारी पुजान के भूप भली बिद, नियावत सीस ना जात बिचारे, एते पय तो कहा पय भूपत, अंत कौ नंग ही पाए पधारे, जीत फिरै सब देश दिसान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे, भूत भविख भवान के भूपत, कौन गणै नहीं जात बिचारे, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, अंत काओ अंत के धाम सिधारे, तीरथ नान दया दम दान, सो संजम नेम अनेक बिसेख, वेद पुराण कतेब कुरान,
ਜਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਜਤਿ ਜਤ ਧਾਰ ਸਭੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰਕ ਦੇਖੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖੈ ਸੁਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ ਸੋ ਸਾਜ ਸਨਾਹ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੈਂਗੇ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲੈਂਗੇ ਤੂਰ ਅਰੀਨ ਮਰੂਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਨ ਮਲੈਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚੱਲੈਂਗੇ ਬੀਰ ਅਪਾਰ ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ ਅਭਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ ਤੋਰਤ ਦੇਸ ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦੇਵਈਆ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾਢ ਜੈਤ ਧੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ ਸੱਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾਦਪ ਜੌਨ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰੈਂਗੇ ਕੋਟ ਇਸਨਾਨ ਗਜਾਦਿਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸਵੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੈਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸਰ ਬਿਸਨ ਸਚੀ ਪਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੈਂਗੇ ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰੈਂਗੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹਾਉ ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸਾ ਮਹਿ ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ ਕੋ ਬੂਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਣ ਧਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕੋ ਬੂਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਣ ਧਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਉ ਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੋ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵਹੋ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਾਰ ਦੈ ਕਰੀਐ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕਉ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮਹੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉਂ ਜੋ ਬਾਰ ਚਾਹਉ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਆ ਹੈ ਚੁਣ ਚੁਣ ਸੱਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਆ ਹੈ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਜੈ ਉਬਰੀਐ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ ਜੂ ਕਰੀਆਹੋ ਰੱਛਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ
तुम हो पुरी चतुर दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी सेव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव कन को साव गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना घट घट के पट पट की जाना जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंभ आदि अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा ताकाओ कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव काओ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप आपुनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उतभुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा सिगरी सरिष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिखे संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रान काता जे अस तुज तब सरणी परे तिन के दुष्ट दुखित हुवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारि हो ताके ताप तनक मह हरि हो रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई दुष्ट छाह छुवै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा जारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्ब ठाउर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुभराता
किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अस तुज जब भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख ना तिसै व्यापत कोई। अडिल सुनै गुंग जो याहे, सुरस ना पावई। सुनै मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना, तिन नर के रहै हो जो। या की एक बार चाओ पई को कहै, चाओ पई संबत सत्र है। सहस पनिजै अर्ध सहस पुन तीन कहिजै। भादरव सुधी अष्टमी रविवारा, तीरस तुदरव ग्रंथ सुधारा। सुवैया पाए गहे जाब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं। आनेओ राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद, कहे हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहेओ तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहेओ तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावन आइया। शब्दोता गाव हो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ, सत गुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकार, ओह करे तेरा कार्ज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही। घर तेरा, घर ता तेरा सब किछ है। जिस देहे सो पावे सदा सिफत, सलाह तेरी। नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसया। वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही। घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया, कर सांत सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो। जिस दिया एह वडियाईया, कह नानक सुनहो संता हो। शब्द धरहु प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे कला। जित घर धारिया, पंच दूत तुद वास कीते काल। कंटक मारिया तुर कर्म पाया, तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह निमानी, देह निमानी लिवै बज हो। क्या करे वेचारिया, तुद बाज समरथ कोय नाही। कृपा कर बनवारिया, एस नाओ होर थाओ नाही। शब्द लाग सवारिया, कह नानक लिवै बज हो। क्या करे वेचारिया, आनंद आनंद सब को कह। आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते। कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया।
अंदरहो जिन का मोह तुटा तिन का शब्द सच्चा सवारिया कह नानक एहो आनंद है। आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देहे सोई जान पावै पावै ता सो जान देहे जिसनो होर क्या करहै विचारिया एक भरम भूले फिरहै दह दिस एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावै कह नानक जिस देहे प्यारे सोई जान पावै। आवह संत प्यारे हो अकथ की करहै कहानी करहै कहानी अकथ केरी कित द्वारै पाईऐ तन मन धन सब सौप गुर कौ हुकम मन्या पाईऐ। हुकम मन्हो गुरु केरा गावहु सच्ची बाणी कह नानक सुनहु संत हो कथेहु अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी। जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया ए मन प्यारिया। तू सदा सच समाले एहो कुटंब तूजे देखदा चलै नाही तेरै नाले। साथ तेरै चलै नाही तिस नाल क्यो चित लाइयै ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइयै। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरै नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया किनै तेरा अपना आप तू जान हे जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखान आए। आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया। सोर नार मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जीव जंत सब तुद उपाए एक वेख परसन आया लब लोभ अहंकार चूका। सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्या हो तिखी वाल हुन की एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समानी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हे तिव चलहै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए हे तिवै चलहै जिन्ना मार्ग पाव हे। कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्याव हे। जिसनो कथा सुनाए हे अपनी से गुरद्वारै सुख पाव हे। कह नानक सच्चे साहिब ज्यो भावै तिवै चलाव हे। एहो सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला। सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया जिन धुर हो लिखिया आया। एक फिर है कनेरे कर है गल्लां गल्ली किनै ना पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटंब सहत स्यो पवित संगत सबाइया। कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै बिन सहजै सहसा ना जाए। नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए।
ਸਹਸੈ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਧੋਵਹੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗਹੋ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਏ। ਜੀਆਹੋ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲ ਜੀਆਹੋ ਤਾ ਮੈਲੇ। ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ ਏਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਮਰਨ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵੇਦਾ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਨਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰਹਿ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਆਹੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰਹੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰਹੋ ਤਾ ਨਿਰਮਲ ਜੀਆਹੋ ਨਿਰਮਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੈ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ। ਜੀਆਹੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ। ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਵੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ। ਪੁੱਛੋ ਬਿਬੇਕੀਆ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਹੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਆਵਹੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਵਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪਿਹੋ ਸਾਰਿਗ ਪਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੋ ਏਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਇਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਓ ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸੇਵ ਸਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕੈ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ। ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ। ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਏਕਸ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ। ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੋ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤਿਹਿ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆ ਰੈਨ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਅਣ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰੈਨ ਵਿਹਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਮਨਹੁ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏ ਵਡਦਾਤਾ।
ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਨਉ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਏ ਵਡ ਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੇ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਏਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੈ ਵਿਟਹੋ। ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸਉਪੀਐ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੈ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੈ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਹੋ ਜੀਆਹੋ ਲਾਹਾ ਖਟਿਹੋ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹੋ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਏ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੈ ਜਿਚਰ। ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੈ ਨਾ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੈ ਪੀਐ ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ, ਜਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜੀਉ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪਏ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪਏ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਤ ਰਹੋ ਮੇਰਿਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਧਰੀ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਵਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣਹੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ ਸੱਚ ਅਲੱਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ।
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਨਹੁ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਹੁ ਸਾਚੈ ਸੁਣ ਨੈਨੋ ਪਠਾਏ ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨਾਉ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇਕ ਨਾ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਵ ਨਿਧ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਇ ਪਾਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਤਾ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੈ ਜਿਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵ ਹੇ ਸਚੋ ਧਿਆਵਹਿ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵਹਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵ ਹੇ ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਾਨ ਪਾਵ ਹੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਘਰ ਗਾਵ ਹੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣਹੁ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

कूड राजा, कूड प्रजा, कूड सब संसार, कूड मंडप, कूड माड़ी, कूड बैसन हार, कूड सोना, कूड रूपा, कूड पहनन हार, कूड काया, कूड कपड़, कूड रूप पा।

दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न होए तू करता करुणा में ना ही जा हो करी ना होई।

जैसो मन कनक कनक सोना कामनी औरत मर्द स्नेह प्रेम विच तैसो ने तेवे दा साध संग पल पल अख चमकन जिन्ना भी नहीं लगता तैसो मन पल ना लगा वही माया तंद बंद औद बिहाए जाए गुर उपदेशहीन पछ पछतावी। सारे माई भाई बुजुर्ग आखो जी सतनाम। तुहाडी सुरत एक मिनट सुल्तानपुर साहब लेके चलीए तुहान गुरु नानक महाराज के पावन चरणा विच अंतरजामी गुरुद्वारा है। जिस वेले महाराज वेई नदी चो आए ने ते दौलत खान बाब ने बुलाया गुरुदेव आए नहीं दूजा बोल बुलाया आए नहीं मसाण भूमिका च बैठे सी तीजा बोल आया महाराज आ गए कहिंदे नानका तेनू एक बुलावा भेजदे सी तू उसे वेले आ जांदा सी तेनू तीन बुलाए भेजे ने तू आया नहीं तो गुरु नानक देव महाराज सतगुरु जी ने पहली लड़ाई लड़ी है कि बाबर नाल जिन्हों कहा तू जाबर है गरीबा ते जुल्म करदा है। सतगुरु जी कह लगे दौलत खान बाब चाकर जबै तुमार हां जी चाकर जबै तुमार आवते तुम कहे जदो ते बंदा किसी की नौकरी चाकरी करदा हो उदो ते उदा कहना मनना ही पैंदा है ते जदो नौकरी चाकरी है ही किसी की नहीं रब की नौकरी है तो फिर परवाह कादी है। साहब कह लगे चाकर जबै तुमार आवते तुम कहे तजी किरत सबकार न्यारो होए रहे हुण असी आ मोदी का कम छड़ दिता असी तेरा कहना कादा मन्नांगे। ते दौलत खान बाब कह लगा की चाकरी होर किसी की कर ली है नौकरी होर किसी की कर ली। महाराज कहिंदे हां कहिंदे किहदी कीती है तो महाराज कहिंदे चाकर जबै तुमार आवते तुम कहे तजी किरत सबकार न्यारो होए रहे। सब कह लगे चाकर भए खुदाए हां जी चाकर भए खुदाए हुक्म तह मानई हौ निरंकार करतार। जेड़ा निरंकार करतार है मैं ओदा चाकर हो गया जाके चाकर को नहीं डाण जाके चाकर को नहीं बाण जाके दफ्तर पुछे न लेखा ताकि चाकरी करो बसेखा। गुरु नानक महाराज दे जदों ये बोल सुने दौलत खान नवाब कह लगा नानक मोदी अज है जुम्मे दा रोज अज साडे नाल मसीते चल। महाराज कहिंदे जरूर चलांगे। ते जिस वेले गरीब निवाज करोड़ां ब्रह्मंडा खंडा दे मालक प्यार विच आखो धन गुरु नानक देव जी धन गुरु गुरु नानक देव सचे पातशाह जी ते साहब जी मुस्कुरा के कह लगे दौलत खां चलो भाई चलीए। ते जदों मेरे गरीब निवाज करोड़ां ब्रह्मंडा दे मालक दौलत खां नवाब दे कोलों मसीत नूं तुर पे ने ते सारे सुल्तानपुर विखे हाहाकार मच गई। हिंदू लोग कहण लगे बड़ा कहर वरत जाएगा ये जाके नमाज पढ़ लैणगे बात उल्ट हो जाएगी। ते दौलत खान नवाब तो डरदे बोलदे भी नहीं है। कवि राज कवि संतोख सिंह जी ने बचा लिखे ने कहिंदे हिंदू कोई ना कह सके हिंदू कोई ना कह सके तुरकन तेज विशाल परमेश्वर पत राखसी सिमरै दीन दयाल। कोई डरदा उच्ची साह नहीं लैंदा ते रब अगे अरदासा करदे परमात्मा उन्हां नूं इह नहीं पता भी गुरु नानक ही रब है। अरदासा तां जरूर करदे ने पता नहीं है। कह लगे महाराज तुसी साडे पत टक रहो गरीब निवाज ते मेरे गरीब निवाज सचे पातशाह जिस वेले मसीते गए ने ते सारे नमाज पढ़दे ने गरीब निवाज अडोल खड़े रहे। ते जिस वेले नमाज समाप्त हो गई दौलत खान नवाब कहिंदा नानक मोदी नमाज नहीं वो पढ़ी तो सचे साढ़े भी मेरे वर्गे के भी हालात ने। महाराज कहिंदे नमाज किहदे नाल पढ़नी सी कहिंदे साढ़े नाल। महाराज कह लगे तू नमाजा थोड़ी पढ़दा सी तुसां ने बहुत वार सुनिया है काबल कंधार चो घोड़े खरीददा सी ते लागे खलोता होया काजी ओ बोल पिया कह लगा देखो इन्हां दा मन दा तुसीं देख लिया कुछ इशारा तुहानूं मिल गया होवेगा मैं तां सूझवान बंदा है ना ते तुसीं मेरे नाल नमाज पढ़ लैंदे
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨਵਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਬੈਣ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਬੈਣ, ਐਣ ਗੁਣ ਸੁੱਖ ਦਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਬੈਣ, ਐਣ ਗੁਣ ਸੁੱਖ ਦਇਆ।

हे मेरे गरीब निवास सचे पातशाह, जेड़े तेरे नाम नू लेंदे ने, जेड़े रसना द्वारे आखदे ने सतनाम, उन्ना तो कुर्बान जाइए, लैण जो तेरा नाओ, लैण जो तेरा नाओ, उतना कह हो सद कुर्बाने जाओ, काया रंगण जे थिए प्यारे, पाइए नाओ मजीठ, रंगण वाला जे रंगा साहिब, ऐसा रंगणा

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय घर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सतगुरु।

हीन माण्यों के मान नितान्यों के तान न्योटियों की ओट सचे पिता अकाल पुरख वाहि गुरु जी धन हो साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जीओ महाराज धन हो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जीओ महाराज धन हो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज सचे पातशाह आप जिया ने अपार कृपा बख्शिश की अमृत वेले दे दीवान सजे सजे दीवाना अंदर नित नेम दी समाप्ति उपरंत संगति रूप विच वाहिगुरु गुरमंत्र जाप आसा की वार दे कीर्तन अते लड़ी वार पावन गुरबाणी दी कथा विचार होई है जी समुचिया ही सेवावां निभांदिआं गुरबाणी पढ़दिआं सुणदिआं होईआं सरबत भुल्लां दी कृपा करके खिमा बख्शिश करनी अगाह वास्ते समत बख्शनी दर ते आईआं संगतां दीआं हाजरीआं भेटावां चरणां ते प्रवान कर लैणीआं पातशाह सबना नूं दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नामदान बख्शिश करके निवाजना कारोबार परिवार रुजगार वादे वरकतां बख्शणे मनोकामनावां भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां मेहरबान जी आप जिया दे दर कर दे प्रीतवान भाई निधान सिंह जी सपुत्र गुरशरण वीर सिंह जी तिना दे जन्मदिन की खुशी विच महाराज कड़ा प्रसादी परिवार वालों देग दी सेवा है भाई सरबजीत सिंह जी तिना वालों पुचंगी जतिंदर सिंह गरेवाल दे जन्मदिन की खुशी विच कड़ा प्रसादी देग दी सेवा है भाई अमरवीर सिंह जी गिल तिना वालों सचे पातशाह जी सुपरवाइजर दी इंटरव्यू विच सफलता दी जाचना करदिआं होइआं कड़ा प्रसादी देग दी सेवा है कृपा करनी समूह सेवक परिवारां दे सिर ते मेहरां भरिया हथ रखना आरंभे हुए कार्ज निर्विघनता सहित सफले सुहेले करने देह अरोगता तंदरुस्तियां बख्शिश करनियां परिवारां विच आपसी प्रेम प्यार इतफाक विश्वास भरोसा बख्शना किरत कमाईआं विच वरकतां बख्शिश करनियां दिन दुगुणी रात अते चौगुणी तरक्की बख्शिश करनी दुखां कलेशां पापां विघनां दा नाश करना बच्चियां नूं दुनियावी विद्या दे सहित ब्रह्म विद्या दी दात बख्शणी माता पिता दे आग्याकारी बना के रखना माड़ी भैड़ी संगत तों बचाउणा मनोकामनावां भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां छे पौड़ियां आनंद साहिब जी की अरदास कड़ा प्रसादी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगतां विच वरताउण दी आग्या होवे जो जी शके सुआप जी का ही नाम जपे कला वाहिगुरु जी की वरते कृपा करो पातशाह पावन पवित्र हुक्मनामे बख्शिश करके समूह संगतां नूं नदरो नदरी निहाल करो सही प्यारियां दे दर्शन दीदार मेले बख्शणे जिना मिलिया आप जी का ही नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या भई अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो

वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वड्या भागा करके सतसंगत की प्राप्ति हुई है। हजूर दे सचखंड दरबार दियां हाजरियां भर के गुरबाणी सरवण करके लाहे प्राप्त कर रहे हो। धनवादी हाँ ज्ञानी गुरमेल सिंह जी टोरंटो वालियां दे, जो लड़ीवार पावन गुरबाणी दी श्री सुखमनी साहिब जी दी कथा विचार आप जी नूं रोजाना ही सरवण करवाउंदे आ रहे हन। आओ अगले समय वास्ते बेनती करा सोडी सुल्तान पातशाह धन सतगुरु गरीब निवाज श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जियां दे दरों करों वरसाए हुए कीर्तनीय गुरमुख प्यारे भाई साहिब भाई गुरसेवक सिंह जी आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन सरवण करवाउणगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीआं दे पावन पहले प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदिआं होइआं शब्द चौंकियां कल शाम तों प्रारंभ होईआं ने, अज शाम अते कल शाम रहिंदे दिनां विच आप जीआं ने वध चढ़ के पहुंच के हाजरियां भरनीआं। शब्द चौंकी दौरान सतगुरु जी दी सिफत सलाह विच जुड़ के हजूर दे दरों घरों खुशियां प्राप्त करनियां। शब्द चौंकी दी आरंभता दा समां लगभग 7:45 दा होवेगा, सो 7:45 दे नेड़ तेड़ आप जी ने गुरु घर विखे पहुंचण दी कृपालता करनी। श्री अखंड पाठ साहिब 11 तरीक नूं मुख दरबार साहिब जी दे विच प्रारंभ होणगे अमृत वेले 6 बजे। भोग 13 सितंबर दिन ऐतवार सवेरे 9 बजे पाए जाणगे। इन्हां सारे ही समागमां विच आप जी ने वध चढ़ के हाजरियां भरनियां। आओ गुरु सवारियां पासों गुरबाणी दा मनोहर कीर्तन सरवण करके लाहे

कटका मैं सिंध जैसे शिपे शपाय ना शपाए से कटका मैं सिंध जैसे शिपे ना शपाए सा जैसे चक्र व न छानो रहत सिंहासन पै देश में दुहाई फेरे मिटे ना मिटाए सा।

कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तर सबहू जेते बदन श्रेष्ठ सब तार।

जिन हर हिरदय नाम ना बस्यो तिन मात कीजै हर बांझा तिन सुनी देह फिर है बिन नावै ओए खाप खाप मुए करांजा जिन हर हिरदय नाम ना बस्यो तिन मात कीजै हर बांझा तिन सुनी देह फिर है बिन नावै ओए खाप खाप मुए करांजा मेरे मन जाप राम नाम हर माजा हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी गुर ज्ञान दियो मन